0: क्लास तुम कुफाफ ही
1: जब तार नहीं थी क्या हमले चौथों ने सका मापिएल ना मिपित रेसका चौंड रेसका मापतुंगा ज़ेमा को लासा लासोटर ने चिस्तीचन ले रेसका ना रेसा पंजाका ने निपंती ने फ़ामाज़ा बब्बे आ स्रुआ नोटों सिचुआ दित पंजाका निम्याचुआ चाचिफ्रा फ़ाय चौथों रेसका नफ़लोवा नरेसका मनाइरा Famarev de marev mit nam softon zoa tanan at pena guava na bimituari manairan tuka timas manat na fuktan si ke demantani aya batifan de brebe ni rarai fatena manira na biza batu de onat de andisan temia katra lewe mande ilan senanai mat ila vart zal zai ina netau de asip muntadi ane tant kniumbi tupna ndraiky ta misy ray aman-dreny misy efa zay zany le taitan'olona akoatrany hoe matahatra ny olona matahotra ny olona fa zavatra sarotra io a de sahirana ny olona.